ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 जून बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। व्हाइट हाउस ने बुधवार को बताया कि अमेरिका और ईरान ने समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रारंभिक समझौते का उद्देश्य आपसी संघर्ष समाप्त करना है। ईरानी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई के हवाले से ताज़ा जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के उल्लंघन के बेहद गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि अब दोनों नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान यही चाहता था और उसे औपचारिक समारोह की कोई खास ज़रूरत नहीं दिखती। हालांकि उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बैठक की योजना में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि शुक्रवार को हस्ताक्षर समारोह की मेज़बानी की जाएगी। बुधवार को फ्रांसीसी रिजॉर्ट नगर एवियन में G7 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद ट्रंप ने इस समझौते की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे सभी और कहीं अधिक लक्ष्य हासिल होंगे। अमेरिका 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचना चाहता है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी कि ये एक समझौता ज्ञापन है, अगर 60 दिनों में अंतिम समझौता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि ये समझौता बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ सकता है क्योंकि हम उन्हें कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अंतिम समझौता होने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन जब तक ईरान शर्तों का पालन कर रहा है उन्हें कोई चिंता नहीं है। G7 नेताओं ने पूर्वी फ्रांस के एवियन में 9 संयुक्त घोषणाएं अपनाते हुए 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन संपन्न कर लिया है। इनमें ईरान और यूक्रेन की स्थिति से संबंधित घोषणाएं भी शामिल हैं। संयुक्त विज्ञप्ति जारी करने के बजाय G7 ने अलग अलग विषयों पर केंद्रित अलग अलग दस्तावेज जारी किए हैं। सम्मेलन अध्यक्ष फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों ने शिखर सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा कि ये नेताओं के बीच एकजुटता, सार्थक विचार विमर्श और वास्तविक सहयोग का पल रहा। भू राजनीतिक मुद्दों पर नेताओं ने ईरान को किसी भी प्रकार के परमाणु अस्त्र हासिल करने से रोकने, होर्मुज जलडमरू मध्य पर वैश्विक निर्भरता कम करने और अपने ऊर्जा भंडार को बढ़ाने के लिए आपूर्ति मार्गों में विविधता लाने के प्रयासों में तेजी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेताओं ने अपनी एकजुटता की घोषणा की कि वे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियारों की आपूर्ति बढ़ाते हुए यूक्रेन को अपना अटूट समर्थन देंगे। पिछले साल कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन यूक्रेन से संबंधित वार्ता में भाग लिए बिना ही ट्रंप स्वदेश लौट गए थे। इस बार उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से चर्चा की। ट्रंप ने ये संकेत भी दिया कि अमेरिका रूस पर कच्चे तेल संबंधी प्रतिबंध फिर से लागू कर सकता है। कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़ने के बाद अमेरिका ने रूस से तेल आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से ढील दी थी। माक्रों ने पत्रकारों को बताया कि वहां मौजूद सभी लोगों की तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना कि शांति वार्ता करने को लेकर रूस कोई खास इच्छुक नहीं है। माक्रों ने सभी नेताओं के इस कथन पर बल दिया कि उन्हें यूक्रेन के मुद्दे पर अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने इस साझा प्रतिबद्धता को एक वास्तविक बदलाव बताया।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते के बाद अगले वर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी अधिशेष देखने को मिलेगा, लेकिन एजेंसी ने चेतावनी भी दी है कि आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य होने और जलमार्गों से बारूदी सुरंगें हटाने में समय लगेगा। बुधवार को जारी IEA के अनुमान के अनुसार 2027 में दैनिक आपूर्ति 80 लाख बैरल बढ़कर 11 करोड़ 3 लाख बैरल हो जाएगी। ईरान संघर्ष के कारण 2026 में आपूर्ति कम रहने वाली है। अनुमान में कहा गया है कि अगर संघर्ष समाप्ति समझौता टिका रहा तो पश्चिम एशिया से तेल उत्पादन और निर्यात में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी बढ़ोतरी अगले साल आएगी। वहीं तेल की मांग अपेक्षाकृत मामूली वृद्धि के साथ 10 करोड़ 53 लाख बैरल प्रतिदिन यानी आपूर्ति से लगभग 50 लाख बैरल कम रहने का अनुमान है। IEA का कहना है कि संघर्ष के मद्देनजर कई देशों ने अपनी ऊर्जा रणनीतियों की समीक्षा की है और अब ये अधिशेष भंडार फिर से भरने या नए भंडार बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है।

0: दशमलव छह प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 6,10,000 से अधिक रही। अमेरिका से आने वाले यात्रियों की संख्या में 7% की वृद्धि हुई और पश्चिम एशिया से आने वाले यात्रियों की संख्या मार्च और अप्रैल में काफी कम हो गई थी, लेकिन कुछ एयरलाइन कंपनियों की सेवाएं बहाल होने के बाद वहां से आने वाले लोगों की संख्या 67.8% बढ़ गई। इस बीच चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 60.4% की भारी गिरावट दर्ज की गई और ये लगभग 3,10,000 रह गई। इसमें लगातार छठे महीने गिरावट आई है। जापान के साथ बिगड़ते संबंधों के मद्देनजर चीन सरकार ने पिछले वर्ष शरद में अपने नागरिकों से जापान की यात्रा न करने का आग्रह किया था। थाईलैंड से आने वाले यात्रियों की संख्या में 8.6% और वियतनाम से आने वाले यात्रियों की संख्या में 2.1% की कमी आई। जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन का कहना है कि इन देशों के पर्यटकों के लिए चीन अधिक लोकप्रिय गंतव्य बनता नजर आता है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 16वें पाठ में सीखेंगे अपनी राय बताने और समझाने का नया तरीका।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया तस्वीरें खींचने के लिए नागानो प्रिफेक्चर आई है। वो गर्म पानी के कुंड को देखने आई है जो उसमें नहाते बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। एक जापानी दंपति ने मिया को तस्वीरें खींचते हुए देखा और उससे बात करने लगे।
0: तो आइए सुनते हैं 16वें पाठ की बातचीत।
2: たくさん写真を撮っているのね。
3: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने हैरान होते हुए कहा,
3: सर गा इप्पाई।
1: वाह, इतने सारे बंदर।
0: वो तस्वीरें खींचने में डूबी हुई थी कि तभी वहां पर्यटन के लिए आई एक जापानी दंपति ने उसे आवाज लगाई। पहले महिला ने कहा,
2: ताकुसान शाशी वो तो तेरु नो ने।
1: आप बहुत सारी तस्वीरें खींच रही हैं।
0: मिया ने जवाब दिया,
3: हाय
1: जी,
3: कोको वा काइगाई देमो यूमे ना ओनसेन देस।
1: ये ओनसेन विदेशों में भी प्रसिद्ध है।
0: उसके बाद पुरुष ने कहा,
4: हे सो नंदा।
0: अच्छा, ऐसी बात है।
4: ओनसेन
0: में बैठे बंदर आम नहीं है, इसीलिए ना।
1: तभी मिया को कुछ दिखाई दिया और उसने कहा, अरे बंदर का बच्चा,
3: कवाई,
1: कितना प्यारा है।
0: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में बैठे बंदर बहुत प्यारे लग रहे होंगे। वैसे दोस्तों, जब आप जापान घूमने आएंगे और कोई आपसे जापानी भाषा में बात करेगा तो हर बात आपको समझ में नहीं आएगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस धीरे धीरे अपना शब्द ज्ञान बढ़ाते जाइए।
1: तो आज का मुख्य वाक्य है,
3: यूमे ना ओनसेन देसु,
1: यानी प्रसिद्ध ओनसेन है। इस वाक्य को याद करके आप अपनी बात समझा सकेंगे और अपनी राय दे सकेंगे।
0: इस वाक्य में

0: 有名な
1: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्रसिद्ध।
0: ओनसेन
1: का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, इसका अर्थ है गर्म पानी का कुंड। और
0: डेस
1: वाक्य को विनम्र बनाने के लिए अंत में लगाया जाता है।
2: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषणों का उपयोग कैसे करते हैं। 12वें पाठ में हमने ई विशेषणों के बारे में बताया था, जिनकी अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
0: कवाई
2: यानी प्यारा।
1: इसके अलावा जापानी भाषा में ना विशेषण भी होते हैं। इनका एक उदाहरण है आज की बातचीत में आया शब्द
0: युमेना
1: यानी प्रसिद्ध। जब ये विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं तब इनकी अंतिम ध्वनि ना होती है। आज की बातचीत से ही उदाहरण लेते हैं।
0: युमेना ओनसेन
1: का मतलब है प्रसिद्ध ओनसेन।
2: ना विशेषण का उपयोग वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है। ऐसे में अंत का ना हटाकर उसकी जगह देस लगाते हैं, तो
0: युमेना
2: से बनेगा
0: युमे देस
2: यानी प्रसिद्ध है।
1: अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लें।
0: युमेना ओनसेन देस, युमेना ओनसेन देस।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं।
3: गेंकी नासारु देसु ने।
4: होंतो गेंकी देसु ने।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा
3: गेंकी नासारु देसु ने,
2: कितना फुर्तीला बंदर है ना।
1: यहाँ
0: गेंकी ना
1: एक ना विशेषण है जिसका अर्थ है फुर्तीला।
0: सर
1: का मतलब है बंदर और वाक्य के अंत में लगा है ने, जिसका उपयोग दूसरे की सहमति की आशा करते समय किया जाता है।
2: जवाब में दूसरी महिला ने कहा
4: होंतो गेंकी देसु ने,
2: सचमुच फुर्तीला है।
1: इस वाक्य में
0: होंतो
1: का अर्थ है सचमुच, ये सहमति दिखाता है। और उसके बाद विशेषण
0: गेंकी ना
1: वाक्य के अंत में आया है, इसीलिए ना हटाकर देस लगाया तो बन गया
0: गेंकी देसु।
2: तो सुनिए और दोहराइए।
0: गेंकी ना सारु, गेंकी ना सारु देसु ने, गेंकी देसु ने।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि बर्फबारी बंद हो गई है और ओनसेन में शांति छा गई है। आप जापानी भाषा में बोलना चाहते हैं शांत जगह है ना। शांत के लिए जापानी शब्द है
0: शिज़ुकाना
1: और जगह को जापानी भाषा में कहते हैं
0: बाशो।
1: तो कोशिश कीजिए।
5: शिज़ुकाना बाशो देसु ने, शिज़ुकाना बाशो देसु ने।
2: अब मान लीजिए आप बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर दृश्य देख रहे हैं और कहना चाहते हैं सुंदर दृश्य है ना। सुंदर को जापानी भाषा में कहते हैं
0: किरेना
2: और दृश्य का जापानी शब्द है
0: केशिकी।
2: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: किरेना केशिकी देसु ने, किरेना केशिकी देसु ने।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो जापानी पर्यटक का वाक्य था। आप भी याद कर लीजिए।
6: हे
0: हे,
2: इसका उपयोग किसी की बात पर हैरानी या दिलचस्पी दिखाने के लिए होता है। इससे पता चलता है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात में रुचि ले रहे हैं।
1: अब आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
0: हे,
2: किसी की बात दिलचस्प लगे तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
3: सारु गा इप्पाई,
7: ताकुसान शाशिन वो तोत्ते इरु नो ने।
3: हाई, कोको वा काइगाई देमो यूमेई ना ओनसेन देसु।
6: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは

0: 珍しいからね。
1: 猿の赤ちゃん、かわいい。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
3: अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज हम बता रहे हैं जापान के ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों के बारे में।
4: जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, इसलिए पूरे देश में ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड भी बहुत सारे हैं। उनके पानी का रंग, गंध, स्पर्श हर जगह अलग अलग है। ये माना जाता है कि ओनसेन के पानी में थकान दूर करने जैसी चिकित्सीय विशेषताएं भी होती हैं।
3: हालांकि ये भी ओनसेन जाने का एक कारण हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग दोस्तों और परिजनों के साथ घूमने फिरने के लिए ओनसेन जाते हैं। सराय में ठहरना, खाने पीने का आनंद लेना, देर तक ओनसेन में बैठे रहना, ये साथ में समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका है।
4: जापान में बहुत सारे प्रसिद्ध ओनसेन हैं। टोक्यो के पास कोसात्सु ओनसेन लोकप्रिय है। दक्षिण पश्चिमी प्रिफेक्चर ओइता का बेप्पू ओनसेन मशहूर है। ये दोनों पुराने समय से ही लोकप्रिय हैं।
3: इसके अलावा तोहोकु क्षेत्र के पहाड़ों में छिपा न्यूतो ओनसेन भी प्रसिद्ध है। वहाँ का माहौल लोगों को आकर्षित करता है।
4: जापान में घूमकर आप भी अपना मनपसंद ओनसेन ढूंढ सकते हैं।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
4: अगले पाठ में मिया जापानी दंपति के साथ सोबा नूडल्स खाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 18 जून बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। व्हाइट हाउस ने बुधवार को बताया कि अमेरिका और ईरान ने समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रारंभिक समझौते का उद्देश्य आपसी संघर्ष समाप्त करना है। ईरानी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई के हवाले से ताज़ा जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के उल्लंघन के बेहद गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि अब दोनों नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान यही चाहता था और उसे औपचारिक समारोह की कोई खास ज़रूरत नहीं दिखती। हालांकि उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बैठक की योजना में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि शुक्रवार को हस्ताक्षर समारोह की मेज़बानी की जाएगी। बुधवार को फ्रांसीसी रिजॉर्ट नगर एवियन में G7 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद ट्रंप ने इस समझौते की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे सभी और कहीं अधिक लक्ष्य हासिल होंगे। अमेरिका 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचना चाहता है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी कि ये एक समझौता ज्ञापन है, अगर 60 दिनों में अंतिम समझौता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि ये समझौता बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ सकता है क्योंकि हम उन्हें कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अंतिम समझौता होने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन जब तक ईरान शर्तों का पालन कर रहा है उन्हें कोई चिंता नहीं है। G7 नेताओं ने पूर्वी फ्रांस के एवियन में 9 संयुक्त घोषणाएं अपनाते हुए 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन संपन्न कर लिया है। इनमें ईरान और यूक्रेन की स्थिति से संबंधित घोषणाएं भी शामिल हैं। संयुक्त विज्ञप्ति जारी करने के बजाय G7 ने अलग अलग विषयों पर केंद्रित अलग अलग दस्तावेज जारी किए हैं। सम्मेलन अध्यक्ष फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों ने शिखर सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा कि ये नेताओं के बीच एकजुटता, सार्थक विचार विमर्श और वास्तविक सहयोग का पल रहा। भू राजनीतिक मुद्दों पर नेताओं ने ईरान को किसी भी प्रकार के परमाणु अस्त्र हासिल करने से रोकने, होर्मुज जलडमरू मध्य पर वैश्विक निर्भरता कम करने और अपने ऊर्जा भंडार को बढ़ाने के लिए आपूर्ति मार्गों में विविधता लाने के प्रयासों में तेजी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेताओं ने अपनी एकजुटता की घोषणा की कि वे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियारों की आपूर्ति बढ़ाते हुए यूक्रेन को अपना अटूट समर्थन देंगे। पिछले साल कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन यूक्रेन से संबंधित वार्ता में भाग लिए बिना ही ट्रंप स्वदेश लौट गए थे। इस बार उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से चर्चा की। ट्रंप ने ये संकेत भी दिया कि अमेरिका रूस पर कच्चे तेल संबंधी प्रतिबंध फिर से लागू कर सकता है। कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़ने के बाद अमेरिका ने रूस से तेल आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से ढील दी थी। माक्रों ने पत्रकारों को बताया कि वहां मौजूद सभी लोगों की तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना कि शांति वार्ता करने को लेकर रूस कोई खास इच्छुक नहीं है। माक्रों ने सभी नेताओं के इस कथन पर बल दिया कि उन्हें यूक्रेन के मुद्दे पर अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने इस साझा प्रतिबद्धता को एक वास्तविक बदलाव बताया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते के बाद अगले वर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी अधिशेष देखने को मिलेगा, लेकिन एजेंसी ने चेतावनी भी दी है कि आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य होने और जलमार्गों से बारूदी सुरंगें हटाने में समय लगेगा। बुधवार को जारी आईईए के अनुमान के अनुसार 2027 में दैनिक आपूर्ति 80 लाख बैरल बढ़कर 11 करोड़ 3 लाख बैरल हो जाएगी। ईरान संघर्ष के कारण 2026 में आपूर्ति कम रहने वाली है। अनुमान में कहा गया है कि अगर संघर्ष समाप्ति समझौता टिका रहा तो पश्चिम एशिया से तेल उत्पादन और निर्यात में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी बढ़ोतरी अगले साल आएगी। वहीं तेल की मांग अपेक्षाकृत मामूली वृद्धि के साथ 10 करोड़ 53 लाख बैरल प्रतिदिन यानी आपूर्ति से लगभग 50 लाख बैरल कम रहने का अनुमान है। आईईए का कहना है कि संघर्ष के मद्देनजर कई देशों ने अपनी ऊर्जा रणनीतियों की समीक्षा की है और अब ये अधिशेष भंडार फिर से भरने या नए भंडार बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है। चीन से आने वाले यात्रियों की संख्या में जारी गिरावट के कारण मई में लगातार दूसरे महीने जापान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई। जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन के अनुसार पिछले महीने 35,50,000 से अधिक लोग जापान आए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.6% कम है। मई माह में 19 देशों व क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर रही। दक्षिण कोरिया से पर्यटकों की संख्या में 15.2% की वृद्धि हुई और ये लगभग 9.5 लाख रही। वहीं ताइवान से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 14

0: चीन सरकार ने पिछले वर्ष शरद में अपने नागरिकों से जापान की यात्रा न करने का आग्रह किया था। थाईलैंड से आने वाले यात्रियों की संख्या में 8.6% और वियतनाम से आने वाले यात्रियों की संख्या में 2.1% की कमी आई। जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन का कहना है कि इन देशों के पर्यटकों के लिए चीन अधिक लोकप्रिय गंतव्य बनता नजर आता है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 16वें पाठ में सीखेंगे अपनी राय बताने और समझाने का नया तरीका।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया तस्वीरें खींचने के लिए नागानो प्रिफेक्चर आई है। वो गर्म पानी के कुंड को देखने आई है जो उसमें नहाते बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। एक जापानी दंपति ने मिया को तस्वीरें खींचते हुए देखा और उससे बात करने लगे।
0: तो आइए सुनते हैं 16वें पाठ की बातचीत।
2: अब
1: इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने हैरान होते हुए कहा,
1: वाह, इतने सारे बंदर।
0: वो तस्वीरें खींचने में डूबी हुई थी कि तभी वहाँ पर्यटन के लिए आई एक जापानी दंपति ने उसे आवाज लगाई। पहले महिला ने कहा,
1: आप बहुत सारी तस्वीरें खींच रही हैं।
0: मिया ने जवाब दिया,
2: हाय
1: जी,
2: ここは海外でも有名な温泉です。
1: ये ओनसेन विदेशों में भी प्रसिद्ध है।
0: उसके बाद पुरुष ने कहा,
3: हे सो नंदा।
0: अच्छा, ऐसी बात है।
3: ओनसेन
0: में बैठे बंदर आम नहीं है, इसीलिए ना।
1: तभी मिया को कुछ दिखाई दिया और उसने कहा, अरे बंदर का बच्चा,
2: कवाई,
1: कितना प्यारा है।
0: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में बैठे बंदर बहुत प्यारे लग रहे होंगे। वैसे दोस्तों, जब आप जापान घूमने आएंगे और कोई आपसे जापानी भाषा में बात करेगा तो हर बात आपको समझ में नहीं आएगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस धीरे धीरे अपना शब्द ज्ञान बढ़ाते जाइए।
1: तो आज का मुख्य वाक्य है,
2: यूमेना ओनसेन देसु,
1: यानी प्रसिद्ध ओनसेन है। इस वाक्य को याद करके आप अपनी बात समझा सकेंगे और अपनी राय दे सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: यूमेना
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्रसिद्ध।
4: ओनसेन
0: का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, इसका अर्थ है गर्म पानी का कुंड। और
4: देस
0: वाक्य को विनम्र बनाने के लिए अंत में लगाया जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषणों का उपयोग कैसे करते हैं। 12वें पाठ में हमने ई विशेषणों के बारे में बताया था, जिनकी अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
4: कवाई
1: यानी प्यारा।
0: इसके अलावा जापानी भाषा में ना विशेषण भी होते हैं। इनका एक उदाहरण है आज की बातचीत में आया शब्द
4: यूमेन।

0: यानी प्रसिद्ध। जब ये विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं तब इनकी अंतिम ध्वनि ना होती है। आज की बातचीत से ही उदाहरण लेते हैं।
1: युमेना ओनसेन
0: का मतलब है प्रसिद्ध ओनसेन।
2: ना विशेषण का उपयोग वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है। ऐसे में अंत का ना हटाकर उसकी जगह देस लगाते हैं, तो
1: युमेना
2: से बनेगा
1: युमे देस,
2: यानी प्रसिद्ध है।
0: अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लें।
1: युमेना ओनसेन देस, युमेना ओनसेन देस।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं।
3: गेंकी नसारु देसु ने।
4: होंतो गेंकी देसु ने।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
3: गेंकी नसारु देसु ने।
2: कितना फुर्तीला बंदर है ना।
0: यहाँ
1: गेंकी ना
0: एक ना विशेषण है जिसका अर्थ है फुर्तीला।
1: सारु
0: का मतलब है बंदर और वाक्य के अंत में लगा है ने, जिसका उपयोग दूसरे की सहमति की आशा करते समय किया जाता है।
2: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
4: होंतो गेंकी देसु ने।
2: सचमुच फुर्तीला है।
0: इस वाक्य में
1: होंतो
0: का अर्थ है सचमुच, ये सहमति दिखाता है। और उसके बाद विशेषण
1: गेंकी ना
0: वाक्य के अंत में आया है, इसीलिए ना हटाकर देस लगाया तो बन गया
1: गेंकी देसु।
2: तो सुनिए और दोहराइए।
1: गेंकी ना सारु, गेंकी ना सारु देसु ने, गेंकी देसु ने।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि बर्फबारी बंद हो गई है और ओनसेन में शांति छा गई है। आप जापानी भाषा में बोलना चाहते हैं, शांत जगह है ना। शांत के लिए जापानी शब्द है
1: शिज़ुकाना,
0: और जगह को जापानी भाषा में कहते हैं
1: बाशो।
0: तो कोशिश कीजिए।
5: शिज़ुकाना बाशो देसु ने, शिज़ुकाना बाशो देसु ने।
2: अब मान लीजिए आप बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर दृश्य देख रहे हैं और कहना चाहते हैं सुंदर दृश्य है ना। सुंदर को जापानी भाषा में कहते हैं
1: किरेना,
2: और दृश्य का जापानी शब्द है
1: केशिकी।
2: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: किरेना केशिकी देसु ने, किरेना केशिकी देसु ने।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो जापानी पर्यटक का वाक्य था। आप भी याद कर लीजिए।
6: हे
1: हे,
2: इसका उपयोग किसी की बात पर हैरानी या दिलचस्पी दिखाने के लिए होता है। इससे पता चलता है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात में रुचि ले रहे हैं।
0: अब आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: हे,
2: किसी की बात दिलचस्प लगे तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
3: सारु ना इप्पाई,
7: ताकुसान शाशिन वो तोत्ते इरु नो ने।
3: हाई, ここ वा काइगाई दे मो यूमे ना ओनसेन देसु।
6: हे, सो नान दा, सारु गा ओनसेन नी हाइरु नो वा मेज़ुराशी करा ने।
3: सारु नो आकाचान, कावाई।
2: अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज हम बता रहे हैं जापान के ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों के बारे में।
0: जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, इसलिए पूरे देश में ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड भी बहुत सारे हैं। उनके पानी का रंग, गंध, स्पर्श हर जगह अलग अलग है। ये माना जाता है कि ओनसेन के पानी में थकान दूर करने जैसी चिकित्सीय विशेषताएं भी होती हैं।
2: हालांकि ये भी ओनसेन जाने का एक कारण हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग दोस्तों और परिजनों के साथ घूमने फिरने के लिए ओनसेन जाते हैं। सराय में ठहरना, खाने पीने का आनंद लेना, देर तक ओनसेन में बैठे रहना, ये साथ में समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका है।
0: जापान में बहुत सारे प्रसिद्ध ओनसेन हैं। टोक्यो के पास कोसात्सु ओनसेन लोकप्रिय है। दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर ओइता का बेप्पू ओनसेन मशहूर है। ये दोनों पुराने समय से ही लोकप्रिय हैं।
2: इसके अलावा तोहोकु क्षेत्र के पहाड़ों में छिपा न्यूतो ओनसेन भी प्रसिद्ध है। वहाँ का माहौल लोगों को आकर्षित करता है।
0: जापान में घूमकर आप भी अपना मनपसंद ओनसेन ढूंढ सकते हैं।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में मिया जापानी दंपति के साथ सोबा नूडल्स खाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 जून बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। व्हाइट हाउस ने बुधवार को बताया कि अमेरिका और ईरान ने समझौता ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रारंभिक समझौते का उद्देश्य आपसी संघर्ष समाप्त करना है। ईरानी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई के हवाले से ताज़ा जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के उल्लंघन के बेहद गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि अब दोनों नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान यही चाहता था और उसे औपचारिक समारोह की कोई खास ज़रूरत नहीं दिखती। हालांकि उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बैठक की योजना में कोई बदलाव नहीं आया है। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि शुक्रवार को हस्ताक्षर समारोह की मेज़बानी की जाएगी। बुधवार को फ्रांसीसी रिजॉर्ट नगर एवियन में G7 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद ट्रंप ने इस समझौते की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे सभी और कहीं अधिक लक्ष्य हासिल होंगे। अमेरिका 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचना चाहता है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी कि ये एक समझौता ज्ञापन है, अगर 60 दिनों में अंतिम समझौता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि ये समझौता बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ सकता है क्योंकि हम उन्हें कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अंतिम समझौता होने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन जब तक ईरान शर्तों का पालन कर रहा है उन्हें कोई चिंता नहीं है। G7 नेताओं ने पूर्वी फ्रांस के एवियन में 9 संयुक्त घोषणाएं अपनाते हुए 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन संपन्न कर लिया है। इनमें ईरान और यूक्रेन की स्थिति से संबंधित घोषणाएं भी शामिल हैं। संयुक्त विज्ञप्ति जारी करने के बजाय G7 ने अलग अलग विषयों पर केंद्रित अलग अलग दस्तावेज जारी किए हैं। सम्मेलन अध्यक्ष फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों ने शिखर सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा कि ये नेताओं के बीच एकजुटता, सार्थक विचार विमर्श और वास्तविक सहयोग का पल रहा। भू राजनीतिक मुद्दों पर नेताओं ने ईरान को किसी भी प्रकार के परमाणु अस्त्र हासिल करने से रोकने, होर्मुज जलडमरू मध्य पर वैश्विक निर्भरता कम करने और अपने ऊर्जा भंडार को बढ़ाने के लिए आपूर्ति मार्गों में विविधता लाने के प्रयासों में तेजी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेताओं ने अपनी एकजुटता की घोषणा की कि वे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियारों की आपूर्ति बढ़ाते हुए यूक्रेन को अपना अटूट समर्थन देंगे। पिछले साल कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन यूक्रेन से संबंधित वार्ता में भाग लिए बिना ही ट्रंप स्वदेश लौट गए थे। इस बार उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से चर्चा की। ट्रंप ने ये संकेत भी दिया कि अमेरिका रूस पर कच्चे तेल संबंधी प्रतिबंध फिर से लागू कर सकता है। कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़ने के बाद अमरीका ने रूस से तेल आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से ढील दी थी। माक्रों ने पत्रकारों को बताया कि वहां मौजूद सभी लोगों की तरह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना कि शांति वार्ता करने को लेकर रूस कोई खास इच्छुक नहीं है। माक्रों ने सभी नेताओं के इस कथन पर बल दिया कि उन्हें यूक्रेन के मुद्दे पर अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने इस साझा प्रतिबद्धता को एक वास्तविक बदलाव बताया।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते के बाद अगले वर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी अधिशेष देखने को मिलेगा, लेकिन एजेंसी ने चेतावनी भी दी है कि आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य होने और जलमार्गों से बारूदी सुरंगें हटाने में समय लगेगा। बुधवार को जारी IEA के अनुमान के अनुसार 2027 में दैनिक आपूर्ति 80 लाख बैरल बढ़कर 11 करोड़ 3 लाख बैरल हो जाएगी। ईरान संघर्ष के कारण 2026 में आपूर्ति कम रहने वाली है। अनुमान में कहा गया है कि अगर संघर्ष समाप्ति समझौता टिका रहा तो पश्चिम एशिया से तेल उत्पादन और निर्यात में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी बढ़ोतरी अगले साल आएगी। वहीं तेल की मांग अपेक्षाकृत मामूली वृद्धि के साथ 10 करोड़ 53 लाख बैरल प्रतिदिन यानी आपूर्ति से लगभग 50 लाख बैरल कम रहने का अनुमान है। IEA का कहना है कि संघर्ष के मद्देनजर कई देशों ने अपनी ऊर्जा रणनीतियों की समीक्षा की है और अब ये अधिशेष भंडार फिर से भरने या नए भंडार बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है। चीन से आने वाले यात्रियों की संख्या में जारी गिरावट के कारण मई में लगातार दूसरे महीने जापान आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई। जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन के अनुसार पिछले महीने 35,50,000 से अधिक लोग जापान आए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.6% कम है। मई माह में 19 देशों व क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर रही। दक्षिण कोरिया से पर्यटकों की संख्या में 15.2% की वृद्धि हुई और ये लगभग 9.5 लाख रही। वहीं ताइवान से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 14.6% की वृद्धि हुई और ये 6,10,000 से अधिक रही। अमेरिका से आने वाले यात्रियों की संख्या में 7% की वृद्धि हुई और पश्चिम एशिया से आने वाले यात्रियों की संख्या मार्च और अप्रैल में काफी कम हो गई थी, लेकिन कुछ एयरलाइन कंपनियों की सेवाएं बहाल होने के बाद वहां से आने वाले लोगों की संख्या 67.8% बढ़ गई। इस बीच चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 60.4% की भारी गिरावट दर्ज की गई और ये लगभग 3,10,000 रह गई। इसमें लगातार छठे महीने गिरावट आई है। जापान के साथ बिगड़ते संबंधों के मद्देनजर चीन सरकार ने पिछले वर्ष शरद में अपने नागरिकों से जापान की यात्रा न करने का आग्रह किया था। थाईलैंड से आने वाले यात्रियों की संख्या में 8.6% और वियतनाम से आने वाले यात्रियों की संख्या में 2.1% की कमी आई। जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन का कहना है कि इन देशों के पर्यटकों के लिए चीन अधिक लोकप्रिय गंतव्य बनता नजर आता है।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज

0: たくさん写真を撮っているのね。
1: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
2: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
1: 猿の赤ちゃん、かわいい。
3: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
4: पहले मिया ने हैरान होते हुए कहा,
1: सर नहीं पाई।
5: वाह, इतने सारे बंदर।
4: वो तस्वीरें खींचने में डूबी हुई थी कि तभी वहाँ पर्यटन के लिए आई एक जापानी दंपति ने उसे आवाज लगाई। पहले महिला ने कहा,
0: ताकसान शशी वो तो तेरे नो ने।
5: आप बहुत सारी तस्वीरें खींच रही हैं।
4: मिया ने जवाब दिया,
1: हाय
5: जी,
1: ここは海外でも有名な温泉です。
5: ये ओनसेन विदेशों में भी प्रसिद्ध है।
4: उसके बाद पुरुष ने कहा,
2: हे, そうなんだ。
4: अच्छा, ऐसी बात है।
2: サルが温泉に入るのは珍しいからね。
4: ओनसेन में बैठे बंदर आम नहीं है, इसीलिए ना।
5: तभी मिया को कुछ दिखाई दिया और उसने कहा,
1: サルの赤ちゃん。
5: अरे, बंदर का बच्चा।
1: かわいい。
5: कितना प्यारा है।
4: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में बैठे बंदर बहुत प्यारे लग रहे होंगे। वैसे दोस्तों, जब आप जापान घूमने आएंगे और कोई आपसे जापानी भाषा में बात करेगा तो हर बात आपको समझ में नहीं आएगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आप बस धीरे धीरे अपना शब्द ज्ञान बढ़ाते जाइए।
5: तो आज का मुख्य वाक्य है, यानी प्रसिद्ध ओनसेन है। इस वाक्य को याद करके आप अपनी बात समझा सकेंगे और अपनी राय दे सकेंगे।
4: इस वाक्य में
6: यूमेना
4: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्रसिद्ध।
6: ओनसेन
4: का मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं, इसका अर्थ है गर्म पानी का कुंड। और
6: डेस
4: वाक्य को विनम्र बनाने के लिए अंत में लगाया जाता है।
5: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि विशेषणों का उपयोग कैसे करते हैं। 12वें पाठ में हमने ई विशेषणों के बारे में बताया था, जिनकी अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे
6: कावाई
5: यानी प्यारा।
4: इसके अलावा जापानी भाषा में ना विशेषण भी होते हैं। इनका एक उदाहरण है आज की बातचीत में आया शब्द
6: यूमेना
4: यानी प्रसिद्ध। जब ये विशेषण संज्ञा से पहले लगते हैं तब इनकी अंतिम ध्वनि ना होती है। आज की बातचीत से ही उदाहरण लेते हैं।
6: यूमेना ओनसेन
4: का मतलब है प्रसिद्ध ओनसेन।
5: ना विशेषण का उपयोग वाक्य के अंत में भी किया जा सकता है। ऐसे में अंत का ना हटाकर उसकी जगह देस लगाते हैं, तो
6: यूमेना
5: से बनेगा
6: यूमे देस
5: यानी प्रसिद्ध है।
4: अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लें।
6: यूमेना ओनसेन देस, यूमेना ओनसेन देस।
5: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं।
7: गेंकी ना सारू देसु ने।
8: होंतो गेंकी देसु ने।
4: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
7: गेंकी ना सारू देसु ने।
5: कितना फुर्तीला बंदर है ना।
4: यहाँ
6: गेंकी ना
4: एक ना विशेषण है जिसका अर्थ है फुर्तीला।
6: सारू
4: का मतलब है बंदर और वाक्य के अंत में लगा है ने, जिसका उपयोग दूसरे की सहमति की आशा करते समय किया जाता है।
5: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
8: होंतो गेंकी देसु ने।
5: सचमुच फुर्तीला है।
4: इस वाक्य में
6: होंतो
4: का अर्थ है सचमुच, ये सहमति दिखाता है। और उसके बाद विशेषण
6: गेंकी ना
4: वाक्य के अंत में आया है, इसीलिए ना हटाकर देस लगाया तो बन गया
6: गेंकी देस।
5: तो सुनिए और दोहराइए,
6: गेंकी ना सारू, गेंकी ना सारू देसु ने, गेंकी देसु ने।
4: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि बर्फबारी बंद हो गई है और ओनसेन में शांति छा गई है।

0: आप जापानी भाषा में बोलना चाहते हैं, शांत जगह है ना? शांत के लिए जापानी शब्द है
1: शिज़ुकाना।
0: और जगह को जापानी भाषा में कहते हैं,
1: बाशो।
0: तो कोशिश कीजिए। शिज़ुकाना
2: बाशो देसु ने। शिज़ुकाना बाशो देसु ने।
3: अब मान लीजिए आप बर्फ से ढकी वादियों का सुंदर दृश्य देख रहे हैं और कहना चाहते हैं सुंदर दृश्य है ना। सुंदर को जापानी भाषा में कहते हैं
1: किरेना
3: और दृश्य का जापानी शब्द है
1: केशिकी।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
1: किरेना केशिकी देसु ने। किरेना केशिकी देसु ने।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो जापानी पर्यटक का वाक्य था। आप भी याद कर लीजिए।
4: हे
1: हे
3: इसका उपयोग किसी की बात पर हैरानी या दिलचस्पी दिखाने के लिए होता है। इससे पता चलता है कि आप दूसरे व्यक्ति की बात में रुचि ले रहे हैं।
0: अब आप भी सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: हे
3: किसी की बात दिलचस्प लगे तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
5: サルがいっぱい。たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
5: 猿の赤ちゃん、かわいい。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
3: अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज हम बता रहे हैं जापान के ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों के बारे में।
0: जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, इसलिए पूरे देश में ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड भी बहुत सारे हैं। उनके पानी का रंग, गंध, स्पर्श हर जगह अलग अलग है। ये माना जाता है कि ओनसेन के पानी में थकान दूर करने जैसी चिकित्सीय विशेषताएं भी होती हैं।
3: हालांकि ये भी ओनसेन जाने का एक कारण हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग दोस्तों और परिजनों के साथ घूमने फिरने के लिए ओनसेन जाते हैं। सराय में ठहरना, खाने पीने का आनंद लेना, देर तक ओनसेन में बैठे रहना, ये साथ में समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका है।
0: जापान में बहुत सारे प्रसिद्ध ओनसेन हैं। टोक्यो के पास कोसात्सु ओनसेन लोकप्रिय है। दक्षिण पश्चिमी प्रिफेक्चर ओइता का बेप्पू ओनसेन मशहूर है। ये दोनों पुराने समय से ही लोकप्रिय हैं।
3: इसके अलावा तोहोकु क्षेत्र के पहाड़ों में छिपा न्यूतो ओनसेन भी प्रसिद्ध है। वहाँ का माहौल लोगों को आकर्षित करता है।
0: जापान में घूमकर आप भी अपना मनपसंद ओनसेन ढूंढ सकते हैं।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में मिया जापानी दंपति के साथ सोबा नूडल्स खाएगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ですね。
1: आप तसव्वुर करें कि बर्फबारी हो रही है और वो मंजर आपको बहुत पसंद आता है। आप कहना चाहते हैं कितना खूबसूरत मंजर है। तो आप किस तरह कहेंगे? खूबसूरत को जापानी में कहते हैं
2: किरेना, किरेना।
1: और मंजर को
2: केशिकी, केशिकी।
3: किरेना केशिकी देसु ने, किरेना केशिकी देसु ने।
4: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा। سامعین، پروگرام کی ویب سائٹ پر روزمرہ استعمال کی کئی اس میں صفت دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ مشق کر سکتے ہیں۔
1: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں جاپانی سیاح نے استعمال کیا ہے
5: hey.
1: کسی کی بات سن کر انتہائی متاثر یا حیران ہونے کی صورت میں رد عمل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ مخاطب کی بات دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ اس سے ہموار انداز میں گفتگو میں مدد ملتی ہے۔
4: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔ جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔ گفتگو کے دوران مخاطب کی کسی دلچسپ یا حیرت انگیز بات پر اسے ضرور استعمال کریں۔
1: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
6: たくさん写真を撮っているのね。
7: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
5: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
7: 猿の赤ちゃん、かわいい。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
4: アブミヤーカサフリヒダイアトナマ。アジカモズウヘジャパンキガラムチャシメ、温泉。
1: हीरा, आप कभी ऑनसेन गई हैं?
4: अब तक मौका नहीं मिला, हालांकि ख्वाहिश बहुत है। वैसे जापान में कई गर्म चश्मे हैं।
1: जी हाँ, जापान में कई आतिशबाजी पहाड़ होने के बायस तकरीबन हर इलाके में गर्म चश्मे पाए जाते हैं। इनका पानी रंग, बू और लम्स के एहसास के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। कहा जाता है कि अक्सर गर्म चश्मे मुआलजाती खसूसियात के हामिल हैं और थकावट दूर करने वगैरह के लिए बहुत मुअस्सर हैं।
4: क्या लोग ज्यादातर इसीलिए वहाँ जाते हैं?
1: कुछ लोगों के लिए ये बुनियादी वजह हो सकती है, लेकिन अक्सर लोग अहले खाना या दोस्तों के साथ गर्म चश्मों वाली सराय में क़याम करते हुए इन चश्मों में गुसल और वहाँ के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस तरह वो तफरीही अंदाज में अपनी ज़हनी और जिस्मानी थकावट दूर करते हैं।
4: बहुत खूब। अच्छा अनवर साहब, कुछ मशहूर गर्म चश्मों के नाम तो बताइए।
1: टोक्यो के नज़दीक कुसात्सु ऑनसेन और दूर जुनूब मगरब में क्यूशू खत्ते में बेप्पू ऑनसेन, ये दोनों ज़माने कदीम से उमदा गर्म चश्मों के तौर पर मशहूर हैं। तोहोकू खत्ते में पहाड़ों की गहराई में वाक़ न्यूतो ऑनसेन क्यो भी अपने खूबसूरत माहौल के लिए मशहूर है।
4: अब तो मेरा इश्तियाक बढ़ गया है, मैं इस साल सर्दियों में किसी ऑनसेन जरूर जाऊंगी।
1: फितरत को पसंद करने वाले अफराद के लिए खुली जगह वाला गर्म चश्मा दिलचस्प होगा। बहरहाल मुख्तलिफ मकामात का सफर करने से यकीनन आपको अपनी पसंद के ऑनसेन मिल जाएंगे।